0: खेत एक मालो को विंतिस याने मा का मुझी का फ्रॉक ने बे हुसी बेलों सेले सोफरेशो ना बा मालो को विंतिस इरा इता बा कंटिन्यू ना फाटिंग इता न्यू प्रोग्राम ओके बेल जस्टिंग हतो नेतिक मेंसाजें बादाक बा जुविंतुरी शीरा
1: मोलो का तुफान मेंसाजें बा जुविंतुरी शीरा हाउ कंक्लूए हुसी पेरगुंता सेरा तुन माई का दाक आमी ना इन रोआ महेने अतो कोलिया कौन बा जुविंतुरी नी लिली जुविंतुरी ने पापेल जुविंतुरी नी ने कंडीशन जुविंतुरी ने फुतुरु ने हने सने बे तंबाने मक हवानो इन जुविंतुरी बारा माका हकारक हेतन इम्प्रेगो ने प्रॉब्लम स्टार्ट नियन प्रॉब्लम उसे में इंडिविजुअल नियन इधर पॉइस हमने मेंसाजन माका तंब जुविंतुरी दा गोरा ला कंसेगे हते के नो हाडोमी सुसे डारे ने हने सने आन हुसी तो तेवरिया बारा की दा हुसी तेन ना जीसस क्रिस्तु निहाते ते हने सने ओलाबेले दे नो हाडोमी हाउ सेवन हिरा ओला हाडोमी ओने मालुक सिरा तंबाने मा खाउ देहन से हाउ हे ना मुरारा हाउ देना ने सने ओलाबेले दे नो हाडोमी हाउ सेवन हिरा ओला हाडोमी सोसेदाडे तंबा इंटरेस हुसी तने हमुतुक ने इंटरेस बा सोसेदाडे ने मक इंपोर्टेंट अतु लोर सोसेदाडे रे ना बा मुरिस दिया जुवेंटुरी तेंगे साई अर्जेंट ट्रांसफॉर्मेटर बा बुआत ने बे मक लाडिया नु जुवेंटुरी तेंगे हातुर बुआत ने बे मक लॉस देहन लॉस साला देहन साला हाउ ये स्टेटमेंट तुरा करते थे बस जुवेंटुरी सिरा ने सने हाउ कॉन्ट्रा हाउ निया आमन सेबन हीरा निया साला हाउ लॉस मबे हाउ सेला लो उजा हमने हाउ सी मबे हाउ सेला उजा हाउ निया इरेस्पोंसिबिलिटी रे हुरी कॉन्ट्रा निनिया रेस्पोंसिबिलिटी रे मकला दिया मबे हाउ कॉन्ट्रा सेबन हीरा निया साला हाउ लॉस मबे उजा हमने इमातुरिदार रे कॉन्ट्रा निया रेस्पोंसिबिलिटी रे मकाउ साला कंसेप्ट टू डेमोक्रेसी इता कर हतुर बत ने मक लॉस देन लॉस साला देन साला इदेन मक इंपोर्टेंट लबेले देन निया या कार्गो निया एलिट Entau ni sala ni los ita consider ni sala mas ni los ela de ela vele nebe ava pela ba juventude sira tem que cuida hanu in critico critico ni importante te teves la pele saifel alegria ba critico ni critico ni e uma how be sa te tane sane how do me liu how ni amigo sira critico ni duke ha do me e mai de nebe ke la critico tambo husi critico no contradição di idea ma kamusu mudansa hamusu bot fonu sineba Nema koi na repete filo fali tena Jesus Kristu ni lefo. Hadomi luksu seda dene. Jesus dia nane sene ola bele dia no hadomi hau. Se benira ola hadomi one maluk sira. Bahu ne kolega sira mo sawate te maluk juventuri sira. La bele dia ni mi hadomi hau se benira mi la hadomi tene po. Briat.
0: E turmai belon sele se fo bai tene belon ela. Hatonetik mensajim badak ba juventuri sira.
2: Oke dia. Bahu ne maluk juventuri hotu makau hadomi. How la iha lefon ne rebe makfura atu hoto ba imi mebe sumente iha mensaje ne luta kata dadang susidar ne be makita muris ba ne susidar ne be mak nakun ho klase iha ne be riku no kia kontinua kia no ida ne be mak opresore sira kontinua oprimi no opredor sira kontinua hakru tamba ne ha husu itan hira hamutu unifika forsa produtivu Atu bele haraun susidare jane be mako klase ba susidare jane be mak laho klase. Tamba ita kule kon basunta ansuntu lalehan ita helal ita la ihala lehan para tu hetan ita ni liberdade jane be maka la iha rohan. Mai be ita kria susida lalehan ida iha rai ne mak susidare laho klase. Nu ita tengke unifika forsa produtivu ita labele harahun malu tamba problema sosial au problema sirselu Mai be ita tenki unifiki tene forsa kata kita nuda rang phone, fini phone, tenki kulia los babuat nebe mak los, no sala babuat nebe mak sala, hodi nune bele hari sosidade nebe mak igualitario, no sosidade dan nebe mak harmonia, hodi tahamutu kontribui ba desenvolvimento nasional. Obrigado.
0: Oke, maloko vintis, la espera kata, amin entolu ha maloko vintis ira, to ona ni rohang, antes amin entolu ha sestang husi, ita bo sida futa tirung, husi amin entolu la haluha hato, adeus y obrigada.

0: कि एक समय तमाम बने जो बाहर में जो माता से रही तक इन फल नो नियो बोले अफेयर का जो रहता साउदी बाकुम्बा से नहीं ना पूजा बत्ती ने पिसना
1: Ovintis, nei maki informasaun balorong ohing, husi studi sentral kampung alor dili, hawer siana belo, lori ekipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.